0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्र नगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित

0: से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई लेनदेन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
2: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में

0: आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के छठे संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
1: Given a choice, a judicial officer,
2: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
0: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल, माहे

0: पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले दो से तीन दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की यह खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. UPI payments of up to 2,000 rupees to remain free of bank charges. World Circular Economy Forum 2026 to begin today at Gandhinagar in Gujarat. India and Canada begin next round of talks on proposed trade pact. Chief Justice of India Justice Suryakant says mechanism developed by Supreme Court and High Courts to deal with complaints against judges is robust and very responsive. CBI registers FIR in celebrity manager Disha Salian death case. And in men's cricket, second T20 international between India and Afghanistan to be played this evening in Delhi. And now the news in detail. Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. The Finance Ministry issued a gazette notification yesterday.

0: करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

0: मस्ट कीप पेस।
1: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाव बहुउद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
3: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
4: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पाद

0: प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थितिकी, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब 1 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। विदेश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। विश्व के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
3: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखें अपडेट, एक्सपर्ट @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
5: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के

0: पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, महाभारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी, सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
3: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए से
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है हमारा एक ही कलाकार, और आज हम एक ऐसे कलाकार को लेकर आए हैं जो कभी अकेला नहीं आया, बल्कि पूरी की पूरी बॉलीवुड की फौज को अपने साथ सिनेमा घरों में उसने उतारा। जी हाँ दोस्तों, जहां एक ही फ्रेम में सुनील दत्त साहब का रॉब होता था, धर्मेंद्र जी का एक्शन और जितेंद्र जी का डांस, और साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा साहब का खामोश गूंजता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने इस कार्यक्रम एक ही कलाकार में जिस कलाकार को लेकर आए हैं वो है सिनेमा के शहंशाह। जी हाँ दोस्तों, वो शोमैन जिसने बॉलीवुड को मल्टी स्टारर फिल्मों का असली मतलब सिखाया, जिन्होंने पर्दे पर जब इच्छाधारी नागिन उतारी तो पूरा देश थिएटरों में झूम उठा, और जब जानी दुश्मन की गुफा खोली तो सिनेमा घरों के बाहर हाउसफुल के बोर्ड टंग गए। तो आज का ये पूरा प्रोग्राम है उसी एक्शन और फैंटेसी किंग राजकुमार कोहली के।

जी दोस्तों, फिल्म नागिन। जी हाँ दोस्तों, फिल्म नागिन से आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत। ये वही फिल्म नागिन है जिसने बॉक्स ऑफिस पर जो इतिहास रचा, उसने राजकुमार कोहली को रातों रात बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़े डायरेक्टर्स की कतार में खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको मालूम है ये फिल्म जब बनने वाली थी उससे पहले राजकुमार कोहली साहब का साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जी हाँ, जब कोहली साहब ने नागिन की कहानी लिखी तो वो उन्होंने एक इच्छाधारी नागिन की कहानी लिखी जो कि अपने साथी की मौत का बदला लेने के लिए एक एक करके इंसानों को मारती है और उनसे

बदला लेती है। अब भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए तो ये कॉन्सेप्ट एकदम नया था, और जब कोहली जी अपनी स्क्रिप्ट लेकर हर बड़ी हीरोइन के पास गए, हर किसी के पास वो गए, चाहे वो सायरा बानो हो, मुमताज हो, या फिर और कोई भी अभिनेत्री हो, लेकिन सबने ये कहकर मना कर दिया कि भाई हमें कोई भी जहरीला सांप नहीं बनना है, हम हमारी रोमांटिक और ग्लैमरस इमेज में ही अच्छे हैं, हमें अपनी इमेज खराब नहीं करना है। कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था। और उस दौरान जब हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था राजकुमार साहब को, लेकिन हाँ उनको अपनी कहानी पर पूरा भरोसा था, और आखिरकार में वो पहुंचे रीना रॉय के पास, जो उस वक्त अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में थी। मतलब फिल्में मिल रही थी, बस एक दो फिल्में वो कर रही थी, और उस वक्त रीना रॉय को हर किसी ने सलाह दी कि भाई ये फिल्म ना करो, कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रीना रॉय ने अपना भरोसा दिखाया कोहली साहब की इस कहानी में, भले ही वो कोई कैसा भी रोल हो, और मतलब कोई सिंपल रोल नहीं था, नेगेटिव रोल भी नहीं था, लेकिन उनका मानना था कि वो ये रोल करके लोगों के साथ इमोशनली जुड़ेंगी, और ये भरोसे के साथ में वो कोहली साहब जी के साथ जुड़ गई और उन्होंने ये रोल स्वीकार किया। और देखिए 1976 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और थिएटर्स के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी थी उस वक्त कि बस क्या ही कहना। और यही वो किरदार था जिसको हर किसी बड़ी हीरोइन ने ठुकराया था, लेकिन ये वही किरदार है जिसको निभाकर रातों रात रीना रॉय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की कतार में शामिल हो गई, है ना। वैसे ये जो किस्सा है ना, ये बताता है कि राजकुमार कोहली साहब अपनी कहानियों को लेकर किस तरह जुनूनी थे, बल्कि वो अपनी स्टार कास्ट को लेकर के भी बहुत ज्यादा सोच विचार किया करते थे, और शायद यही वजह थी कि उनके पास में जितनी भी फिल्में होती थी वो ज्यादा से ज्यादा मल्टी स्टारर फिल्में होती थी। तो उनके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं उनकी एक और खूबसूरत सी फिल्म जीने नहीं दूंगा से लता और शब्बीर की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

राजकुमार कोहली साहब फिल्मों को लेकर कितना जुनूनी थे, ये उनके शुरुआती स्ट्रगल से भी पता चलता है। दरअसल लाहौर से लेकर जलंधर तक वो किस तरीके से पहुंचे हैं, मतलब उनका जो जन्म हुआ था वो उनका जो परिवार है वो पंजाब में रहता था, लेकिन जब विभाजन हुआ उस वक्त में आर्थिक रूप से वो थोड़ा सा टूट गए और उसके बाद वो पहुंचे जालंधर, और वहां पर राजकुमार कोहली का रुझान थिएटर और पंजाब की सांस्कृतिक गतिविधियों की तरफ था। पंजाब आने के बाद उन्होंने आसपास के जो इलाके थे वहां पर छोटे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया, सिनेमा वितरण का काम करना शुरू किया, और यहीं पर वो धीरे धीरे धीरे धीरे सीखते रहे कि क्या जरूरत होती है फिल्मों को करने के लिए। मुंबई आने से पहले उन्होंने सिनेमा में अपनी शुरुआत एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में की जी, और यहीं पर उन्होंने ये समझा कि भाई जो हमारे दर्शक होते हैं थिएटर में वो क्या देखना चाहते हैं, उनकी क्या पसंद होती है, किस तरह की कहानियां उन्हें पसंद आती है, और किस तरह की कहानियां हों जिनसे बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमा सकते हैं। ये थोड़ा अनुभव और थोड़े पैसे कमाने के बाद वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहुंचे मुंबई। मुंबई आकर सीधे निर्देशन तो मिलना नहीं था, बहुत ही मुश्किल काम था, और उन्होंने धीरे धीरे पहले पार्टनरशिप में काम करना शुरू किया, प्रोडक्शन में उन्होंने हाथ आजमाया, और उसके बाद उन्होंने शुरुआत की पंजाबी सिनेमा से। जी हाँ दोस्तों, पंजाबी फिल्मों में उन्होंने पहले अपनी पकड़ बनाई। उन्होंने साल सन 1963 में पिंड दी कुड़ी जैसी पंजाबी फिल्में बनाई, और इस फिल्म से उन्होंने फिल्म मेकिंग की जो चीजें हैं, किन चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, वो सब चीजें उन्होंने सीखी। और 1972 में आई उनकी एक हिट फिल्म, पंजाबी फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की, और इसी फिल्म ने उन्हें वहां पर कामयाब बनाया, और उसी के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक फिल्म बनाई, और वो फिल्म थी गोरा और काला, जिसमें राजेंद्र कुमार जी का डबल रोल था और उनके साथ थी हेमा मालिनी और रेखा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई। तो लीजिए सुनते हैं पहले हम यही गोरा काला फिल्म से खूबसूरत सा गीत मुकेश जी की आवाज में, आगे का सफर जारी रखेंगे अभी।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत फिल्म गोरा काला से राजकुमार कोहली साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम एक ही कलाकार में। दोस्तों, जब भी 70 और 80 के दशक में फिल्मों के पोस्टर लगते थे और जिन भी पोस्टरों में बॉलीवुड के आधे से ज्यादा बड़े सितारे नजर आए ना, तो सबके मन में सबसे पहले यही नाम आता था कि भाई ये फिल्म राजकुमार कोहली की ही होगी, क्योंकि जहां बहुत सारे बड़े बड़े जो डायरेक्टर थे वो दो बड़े स्टार्स को साथ लाने में भी घबराया करते थे, वही राजकुमार कोहली साहब अपनी फिल्मों में पूरी की पूरी स्टार कास्ट उतार देते थे। सुनील दत्त, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा, रेनो रॉय जैसे किरदारों को लेकर जहां उन्होंने बनाई फिल्म नागिन, वहीं वो उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी ऐसी फिल्में दी जो कि मल्टी स्टारर फिल्में रही हैं। और राजकुमार कोहली जी की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत होती थी उस फिल्म के दमदार डायलॉग्स, बैकग्राउंड स्कोर, बेहतरीन गाने और देखने वालों को अंत तक बांधे रखने का उनका वो कहानी का बंधन, कहानी का सस्पेंस। चाहे वो फिल्म हो बदले की आग, नौकर बीवी का, या मल्टी स्टारर फिल्म राज तिलक, इंसानियत के दुश्मन या फिर जानी दुश्मन। भाई जानी दुश्मन की बात हुई है तो उस फिल्म का गीत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लीजिए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत फिल्म जानी दुश्मन से।

दोस्तों, जो स्टूडियो की घड़ियां हैं वो बहुत तेजी के साथ दौड़ रही है, स्टूडियो की घड़ी, और मुझसे प्रोग्राम खत्म करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन भाई, हमारे दोस्तों के जो संदेश हम तक आए हैं वो लेना भी जरूरी है। और ये संदेश आया गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज का। अगला संदेश आया ताज मोहम्मद, गुलाम साबिर, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से उन्होंने संदेश भेजा है। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टीलर, पुनाराम और कृष्ण देवांगन हमारे साथ जुड़े हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन्हें राजकुमार कोहली जी पर आधारित कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और गीत भी उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं। मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा जुड़े हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, और बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित किशकेशु, रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिला पश्चिम सिंह भूप चाईबासा झारखंड से जुड़े हैं शिवा गोप्रेम, कपिल शिवांश और संगीता गोप के साथ। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान छीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हम तक दी है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम ये नहीं पढ़ पाएंगे, इस चीज के लिए क्षमा चाहूंगी। गुरमीत सिंह मीता जी जुड़े हमारे साथ साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सैगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता जुड़े हुए हैं, और प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल, यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ पलारी से, और गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अगला संदेश संजय डिंगिया, नमन, अपार डिंगिया का, बागपत उत्तर प्रदेश से, जनकपुरी सारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पल्स, विलिस डिकेस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये संदेश आया हमारे साथ अमर रमेश कुमार खत्री जी का, और उन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है कराची से, और इनके साथ हैं कृष्ण लाल खत्री, टेलर मास्टर जी इनके साथ में जुड़े हुए हैं, और मोहम्मद आमीन, जफर सादिक शेख उनके साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन, शांतिनगर, सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल नवानकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये थे वो संदेश जिनके जरिए सभी हम तक जुड़े, और ये कुछ संदेश और हैं। संदीप मकड़, ज्योति, मन्नत मकड़ हमारे साथ जुड़े हैं भारत मकड़ के साथ, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोरैया जलंधर से, और ये जो अगला संदेश है ये भी इन्होंने ही हम तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत संदेशों के लिए जिनके जरिए आप हम सभी से जुड़ते हैं, और अपनी जो बातें होती हैं, अपने जो भी आपके मन की बातें होती है वो आप उन्हें हम तक पहुंचाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अभी आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार में।

आज हमने बात की राजकुमार कोहली जी के बारे में। अब जो घड़ियां हैं वो मुझसे कह रही हैं कि विदा लेने का वक्त हो चला है, तो अब मैं आपसे चाहूंगी अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इसके बाद जो कार्यक्रम होगा मैटिनी मेलेडी, उसको लेकर आ रही हैं हमारी आरजे रेनू तवर, रैना तवर, बहुत खूबसूरत गीतों के साथ वो आ रही हैं। तो अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति। लेकिन जाने से पहले एक ही चीज कहूंगी कि दोस्तों हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए इंद्रप्रस्थ चैनल। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ, जमाना तो है नौकर बीवी का। दिना दिन तक दिना दिन।

0: जमाना तो है नौकर बीबी का।
1: अभी आप सुन रहे थे एक ही कलाकार कार्यक्रम, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हो चला है 3 बजने को हो रहे हैं और कार्यक्रम है मैटिनी मेलोडी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी को प्यार भरा खुशनुमा नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडी, जहां पुराने हिंदी सिनेमा के सुनहरे गीतों के साथ हम सजाते हैं यादों की एक खूबसूरत महफिल। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट रैना तंवर। दोस्तों, सिनेमा घर सिर्फ सिनेमा जो होता है सिर्फ पर्दे पर नहीं, चलती तस्वीरों का नाम नहीं है, सिनेमा तो एहसास है जो किसी पुराने गाने के बजते ही हमें हमारी जिंदगी की किसी खूबसूरत मोड़ पर ले आती है। क्यों, सही कहा ना, कभी किसी की याद आती है तो कभी पहली मोहब्बत मुस्कुरा देती है, कभी बचपन की गलियां याद आती हैं और कभी पुराना गीत सुनकर लगता है कि अरे ये गाना तो हमारे दिल की बात कह रहा है। वो ऐसा जमाना, एक ऐसा दौर जो कि 1950 से लेकर 1980 का मैटिनी मेलोडी सफर इसलिए कहा जाता है, जब हिंदी फिल्मों के गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जिए जाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्मी सफर को, सुरीले सफर को इस पहली धुन के साथ।

0: जी हाँ, लगता नहीं दिल अब यहाँ, हमारा दिल हर जगह लग जाता है क्योंकि हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके ही इस रेडियो कार्यक्रम में जिसका नाम है मैटिनी मेलोडी। और अभी आपने सुना चोरी चोरी फिल्म का, 1956 में रिलीज हुई ये फिल्म है, लता जी और मन्ना डे की आवाज का खूबसूरत सा ये नगमा। और अगला हम आप सुनाने जा रहे हैं बहुत ही खास जो गीत है, लेकिन हम दोस्तों
1: स्थापक हैं,
2: क्या बात है,
1: और आज हम मुहावरों की दुनिया में लेकर आए हैं कान भरना।
2: बहुत से लोगों का शौक होता है ये, आपको पता है ना कि लोग एक दूसरे के कान भरते रहते हैं। घरों में देख लीजिए, पड़ोस में देख लीजिए, कार्यालयों में देख लीजिए,
1: हर जगह
2: आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए किसी दूसरे का कान भर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: और सामने वाले का कान भी कच्चा होता है यार।
1: बिल्कुल, इसी के साथ में जुड़ा हुआ कि आपके कोई कान भर रहा है तो आप कान के कच्चे हैं, इसका मतलब आप जो बातों में आ रहे हैं
2: उन बातों में आ जाते हैं और उसे सच्चा मान लेते हैं।
1: बिल्कुल। और आज हम बात करने जा रहे हैं हल्की फुल्की बातों के अंतर्गत खाने की अतरंगी आदतों की।
2: जैसे
1: कि किसी किसी को शौक होता है ना कि जलेबी को सॉस में डुबो के खाने का।
2: ओहो।

0: बिल्कुल
1: अजीब अजीब सच में मैंने देखा है, शौक होते हैं लोगों के और इस तरीके की बातों पे हम बात करें। कोई हमारे जो श्रोता हैं, जो सखियां हैं, जो सखा हैं, क्या उनके अंदर भी इस तरीके की कोई आदत है कि उनको मीठे के साथ नमकीन को मिक्स करके खाना अच्छा लगता है, या कुछ इस तरीके से जैसे मैंने बताया जलेबी को सॉस में डुबा के खाना अच्छा लगता है।
0: अच्छा।
1: तो इस तरीके की अगर आदतें हैं आपके अंदर या आपके किसी जानने वाले के अंदर तो आप हमारे साथ उसको साझा करिए।
0: हाँ बिल्कुल, एक अलग किस्म की ये आदतें हैं जो हर एक में नहीं होती और हर एक इस तरह का स्वाद लेना पसंद भी नहीं करता है
1: जी।
0: तो आप बताइएगा कि आपके घर में आप कोई व्यंजन बनाते हैं या किसी के घर जाते हैं या आपके घर में बच्चे ऐसा करते हो कि किसी चीज के साथ कोई ऐसी चीज मिलाके खाते हैं, अजीब होती, कॉम्बिनेशन ही नहीं है उस चीज का, है ना। तो इस तरह की बातें हम चाहेंगे आज बहुत अच्छी तरीके से हम श्रोता के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और अभी गीत सुन लें।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती ये गीत तो बहुत ही सुंदर था और बहुत कम सुनने में आया है ये गीत,
1: बहुत प्यारा लगता है ना।
0: हाँ। अच्छा एक बात बताओ आरती, अगर तुम्हारे घर पर किसी जरूरी फैसले पर सबकी राय ली जाए तो क्या मानती हो तुम, वो लोकतंत्र है?
1: बिल्कुल लोकतंत्र माना जाएगा,
0: माना जाएगा।
1: मेरी नजर में तो माना जाएगा।
0: बिल्कुल, मतलब बात छोटी सी है लेकिन लोकतंत्र की जो भावना है हम समझते हैं इसे शुरू हो जाती है, है ना, सबकी बात सुनी जाए और फैसले में लोगों की भागीदारी भी हो। और यही वजह है कि हर साल हम 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं और ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि लोकतंत्र केवल चुनाव और मतदान तक सीमित नहीं होता, ये समानता, स्वतंत्रता, भागीदारी, संवाद और जिम्मेदारी की भावना से भी जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल, हम इसको एक उदाहरण देके समझा सकते हैं लोकतंत्र को। हाँ? बहुत छोटा सा उदाहरण है। हाँ? आप शायद हंस भी पड़े इस पर कि सोचिए कक्षा में पिकनिक के लिए दो जगहों के नाम सामने आए, एक बच्चा बोला मुझे पहली जगह पसंद है और दूसरा बोला मुझे तो दूसरी जगह पसंद है।
0: ठीक है,
1: अगर शिक्षक जो है जो पढ़ा रहा है वो बिना किसी की बात सुने खुद ही फैसला दे दे कि तो ये भागीदारी वाली प्रक्रिया तो नहीं कही जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: कि नहीं, ना हमने उनकी सुनी ना उनकी सुनी, हमने तो अपना फैसला लागू कर दिया।
0: हाँ।
1: तो लेकिन अगर सबकी राय सुनी जाए और विकल्पों पर चर्चा हो और फिर उचित तरीके से निर्णय लिया जाए तो ये लोकतांत्रिक सोच का एक छोटा सा उदाहरण है। यानी सरल शब्दों में कहें तो मेरी आवाज महत्वपूर्ण है लेकिन आपकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
0: ये सबसे बड़ी बात है ना, कि हमारे विचार तो हमने थोप दिए किसी पर लेकिन सामने वाले के विचारों को देखा भी नहीं, लेकिन अगर आपने दोनों विचारों का सम्मान किया यही लोकतंत्र है।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: और मान लीजिए घर में आज तय होना है कि रात के खाने में क्या बनेगा, है ना, होता है ना भाई आज क्या बनाना है, तो पापा कहते हैं भाई आज तो पूरी सब्जी खाने का मन है।
1: हाँ।
0: और बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं हमें तो पिज्जा खाना है, हमें तो बर्गर खाना है। हाँ। है ना, लेकिन मम्मी कहती है कि आज तो खिचड़ी बनेगी,
1: हो गया फैसला।
0: ऐसे में क्या होता है कि वो लोकतंत्र खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और असंतोष घर में
1: प्रजा में
0: व्याप्त हो जाता है, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: जी, और लोकतंत्र हमें सिखाता है कि असहमत होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम दूसरे की बात सुनना ही बंद कर दें। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें नागरिक केवल दर्शक नहीं होते बल्कि व्यवस्था में भागीदार होते हैं, यानी कि मम्मी को सबकी बात सुननी चाहिए। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, सवाल पूछते हैं, अपनी राय रखते हैं और समाज के बेहतर भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही हमेशा ये भी याद रखना चाहिए आरती हमें ये अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं जिन्हें निभाते हुए लोकतंत्र का सम्मान किया जा सकता है। और अब मैं भी यहाँ सम्मान करूंगी लोकतंत्र का, आपसे पूछती हूँ कि एक अंतराल ले लें।
1: बिल्कुल लिया जाए।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से हम स्वागत करते हैं
1: जी।
0: तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, हमारे सखियों और सखाओं ने,
1: हमारे जो सखियां हैं, जो हमारे सखा लोग हैं, सभी कुछ बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। तो एक हमारे जो जो

0: होता है वो लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के हित के लिए बनाई जाती है और लोकतंत्र का यही एक मौलिक पहलू भी है। ऐसे में लोकतंत्र के परिवर्धन और संवर्धन का ये आज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस खास मायने रखता है और इसीलिए इसे मनाया भी जाता है।
0: बिल्कुल, और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता और अपनी बात कहने के अधिकार का सम्मान भी है। सच्चा लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाते हैं।
1: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत कर दी थी और इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों, मूल्यों और स्थिति की समीक्षा करना और इसे मजबूत करना है। यानी जब हर आवाज मायने रखती है तो लोकतंत्र बेहतर परिणाम देता है और ये खास आज के दिन मनाया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया भी जाता है।
0: जी, तो इस समय लोकतंत्र क्या कहता है,
1: यही की गीत सुन लिया जाए।
0: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, हमारी बहुत सारी सखियों ने, बहुत सारी महिलाओं ने ख्वाब को हकीकत का रंग भी दिया है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। और उसी में एक नाम है सुमिता घोष का।
1: जी, तो कहते हैं ना कि किसी के पास हुनर होना बड़ी बात है, लेकिन उस हुनर को सही पहचान और सही अवसर मिलना उससे भी बड़ी बात है। हमारे देश के गांवों में सदियों से महिलाएं खूबसूरत कढ़ाई करती आई हैं, हाथ करके एक पर बुनाई करती आई हैं, कढ़ाई करती आई हैं और अपनी पारंपरिक कलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती आई हैं।
0: बिल्कुल आरती, सही कहा तुमने। लेकिन एक सवाल ये कि अक्सर इतने सुंदर काम को देखकर भी मन में आता है कि क्या इन हुनरमंद हाथों को उनके हुनर का उचित मूल्य मिल सकता है। बस इसी सवाल को अपने काम का आधार बनाया हमारी आज की सखी विशेष यानी सुमिता घोष ने।
1: जी, और सुमिता घोष का जन्म हुआ कोलकाता में और उन्होंने मुंबई से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर डिग्री की उन्होंने हासिल की। और सुमिता का असली विश्वविद्यालय था उनका अपना देश, यानी कि अपना ग्रामीण भारत।
0: कितनी बड़ी बात है ना।
1: जी,
0: और एक लंबे समय तक सुमिता ने ग्रामीण राजस्थान में एक ट्रस्ट के साथ काम किया और उनका काम ग्रामीण विकास, समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ काम था, है ना।
1: और इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, सच में जो ग्रामीण भारत को चुनते हैं, सच में वो कुछ कर गुजरने के लिए मन में पहले ही सोच के रखते
0: ठान लेते हैं। मैं बताऊं, मैं एक ऐसी महिला से मिली थी जो एनएसडीएन थी और उन्होंने नागालैंड जाकर वहां के जो लोग थे उनको चुना कि मैं उनको एक्टिंग सिखाऊंगी।
1: अरे वाह।
0: जो वहां का जो ग्रामीण तबका था, जो अशिक्षित था, वहां जाकर उन्होंने एनएसडी पास आउट करने के बाद वहां स्थान चुना और वहां जाकर वो आज भी काम कर रही
1: है। बहुत बड़ी बात।
0: कितनी बड़ी बात है, जबकि हम एनएसडी से निकलकर सीधा मुंबई की शरण में आते हैं, है ना, और हम फिल्मों की तरफ आते हैं, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना जहां कोई जाना नहीं चाहता और उन लोगों की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता है, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना और वहां लोगों को कलाकारी से जोड़ा। तो ऐसे ही सुमिता घोष हैं, जो कि वो सोच रही थी कि कैसी संस्थाएं होनी चाहिए जो समाज में जो असमानताएं हैं और अन्याय है उसे कम करने में हमारी मदद कर सकती
1: है। बिल्कुल। और ये सब सोचते हुए उनके मन में एक विचार आकार लेने लगा था कि गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना बहुत जरूरी है। किस तरह कारीगर और ग्राहक के बीच सीधा रिश्ता बनाया जाए, परंपरा को आधुनिक बाजार से कैसे जोड़ा जाए, यही विचार आगे चलकर रंग सूत्र बना। लेकिन विचार को हकीकत में बदलना आसान भी नहीं था।
0: बिल्कुल, इतना आसान तो नहीं होता है। जब भी कोई व्यवसाय शुरू करना हो तो सबसे पहले उसकी जो जरूरी चीज है वो क्या है, पैसा।
1: बिल्कुल,
0: पूंजी, है ना। और सुमिता घोष को भी पूंजी की जरूरत थी, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी जो थी दान देने वाली संस्थाएं, और उन्हें इसलिए फंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि रंगसूत्र एक चैरिटी नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में काम करने वाला सामाजिक उद्यम था।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बैंक भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि पर्याप्त व्यवसायिक अनुभव और ऋण के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं थी उनके पास। सुमिता के मन में यही बात चल रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें एक ख्याल आया, अगर इन्हीं कारीगरों के हुनर से ये संस्था बनेगी तो क्यों ना वो इसके मालिक भी बन जाए।
0: कितनी बड़ी बात उनके दिमाग में आई, जो कि हर एक के दिमाग में नहीं आती,
1: क्योंकि अपना तो सब सोचते हैं कि हम अपना व्यवसाय खड़ा कर लें, लेकिन जो हमारे साथ काम करने वाले हैं उनको, उनके लिए सोचकर इतनी बड़ी बात सोचना बहुत बड़ी।
0: बिल्कुल, और कि वही मालिक भी बने। हम क्या सोचते हैं, काम तो हम शुरू कर दें, मालिक भी हम बन जाएं।
1: जी,
0: है ना, हमारे विचार में यही रहता है ना ज्यादातर कि मालिकाना हक जो है हम पाना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान के लगभग 1000 कारीगरों ने आगे बढ़कर कंपनी में 1000 रूपये का निवेश किया, यानी शुरुआत हुई कारीगरों की अपनी भागीदारी से। और ये केवल पैसा जुटाने का तरीका नहीं था बल्कि एक सोच थी कि कारीगर सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यवसाय का भागीदार भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, एक बहुत अच्छी शुरुआत करी। और यही रंगसूत्र की सबसे खास पहचान बनी। रंगसूत्र की यात्रा पहले 2004 में एक उत्पादक कंपनी के रूप में शुरू हुई और फिर 2006 को क्राफ्ट्स इंडिया के रूप में पंजीकृत हुई। और रंगसूत्र का उद्देश्य था कि ग्रामीण कारीगरों को नियमित काम और टिकाऊ आजीविका से जोड़ना, साथ ही उनके पारंपरिक कौशल को भारत और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना।
0: सबसे बड़ी बात ये थी। और यहाँ बात केवल आरती हस्तशिल्प बेचने की नहीं थी, बात थी हुनर, बाजार, सम्मान और स्वामित्व, इन सभी को एक साथ लाने की। और रंगसूत्र से जुड़े कारीगरों में बड़ी संख्या महिलाओं की थी, तो नीति आयोग के अनुसार रंगसूत्र में 2000 से अधिक कारीगर शेयर होल्डर रहे और लगभग 80% कारीगर महिलाएं हैं। तो कारीगरों की भूमिका सह मालिक, सह निर्माता, प्रबंधक

0: और बोर्ड सदस्य के रूप में भी वहां पर रही है।
1: बिल्कुल, और यानी जो महिला है उनके हाथ में सिर्फ सुई और धागा नहीं आया बल्कि साथ में उनके हाथ में निर्णय लेने की ताकत भी आई।
0: बिल्कुल,
1: और सुमिता घोष के रंगसूत्र पर लिखे एक लेख में एक महिला कारीगर के अनुभव को बताया गया है कि कंपनी के शेयर उसके नाम की उन संपत्तियों में शामिल थे जिन पर उसका अपना अधिकार था। अपनी कमाई से उसके पास अपने बैंक खाते और खर्च के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी आई थी।
0: और यही वो बदलाव था जिसे सुमिता घोष सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती थी। रंगसूत्र ने पारंपरिक कढ़ाई, हथकरघा और अन्य हस्तशिल्प कौशल को आधुनिक बाजार की जरूरतों से जोड़ने का काम किया और इसका उद्देश्य था ग्रामीण कारीगर केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहे बल्कि बड़े ग्राहकों और वैश्विक बाजारों तक इनकी पहुंच बन सके।
1: बिल्कुल, और रंगसूत्र ने बड़े बाजार भागीदारों के साथ में काम किया है। इस तरह एक गांव में बैठा कारीगर अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पाद को दुनिया के दूसरे हिस्से के ग्राहक तक पहुंचते हुए देख सकता था। सुमिता घोष के काम को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 2016 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें ग्रामीण कारीगरों और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े उनके कामों के लिए मिला था।
0: बिल्कुल सही कहा। तो एक तरफ गांव की कच्ची गलियां, दूसरी तरफ दुनिया का बड़ा बाजार, इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की जो कोशिश, या यूं कहें बहुत बड़ी कोशिश, बहुत बड़ा काम सुमिता घोष ने किया, उस पुल का नाम क्या है?
1: रंगसूत्र।
0: और सुमिता घोष ने साबित किया कि अगर किसी महिला के हाथ में हुनर है तो उसे केवल काम नहीं, साथ में काम का उचित मूल्य, अपनी पहचान और अपने फैसलों की ताकत भी मिलनी चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर आप किसी हुनर, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको तराशना बहुत जरूरी है, है ना। और उसको तराश के जब आप अपने लिए उसको उपयोग करते हैं ना, तो अपना ही नहीं, साथ में अपने परिवार का, अपने साथ में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं या आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उन सबका भी भला करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और ग्रामीण तबकों में क्या होता है आरती, महिलाएं एक साथ समूह में इकट्ठी होकर वो लघु उद्योग, लघु कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, शुरू करती हैं छोटे छोटे, और उनमें अलग अलग चीजें बनाती हैं, फिर वो सब मिलकर अपना घर भी चलाती हैं। तो इस तरह के भी जो है कुटीर उद्योग गांवों की महिलाएं खासतौर से, लेकिन उनको एक बड़ा व्यक्ति ऐसा मिल जाए, बड़ी सोच वाला, जो उन सबको इकट्ठा करके इस तरह का एक बहुत बड़ा
1: एक मालिकाना हक भी दे दे साथ में,
0: इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमने देखी है जो 70-80 महिलाओं का समूह इकट्ठा करके गृह उद्योग धंधे शुरू करती है और वो वहां पर सभी को जो है अपने अपने तरीके से मालिकाना हक भी मिल जाता है।
1: और ये काम करने से उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है ना कि हम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें शहर जाना पड़े कुछ काम करने के लिए।
0: वो ग्रामीण तबके में रहकर
1: हम अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं
0: और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है। सबसे बड़ी बात है स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत हो।
1: जी,
0: और अभी क्या जरूरी है?
1: अंतराल।

0: हाँ तो आरती, पता है कभी कभी हम बहुत बेचैन होते हैं ना, तो कागज के दिल पे कुछ ना कुछ लिखने लग जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और इसी चक्कर में हम साहित्यकार भी बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं
1: जी।
0: और कहते भी हैं कई बार आपका मन बहुत बेचैन है, मन में बहुत सारी बातें हैं, तो उन्हें कागज पे लिख दो, एक डायरी मेंटेन करो, कहा जाता है ना कि डायरी लिखो, ताकि जो सहन शक्ति जवाब दे गई है वो आपकी कलम से आपकी किताब में एक संकलन के रूप में आ जाएगी।
1: और वैसे भी कहते हैं ना, अगर आप लिख लेते हैं ना कोई भी चीज, तो आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है, आप थोड़े शांत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत जरूरी है लिखना, तो वैसे भी बहुत अच्छा है,
0: बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लेखक नहीं भी हैं, तो अपनी सहनशीलता को बनाए रखने के लिए लिखने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, ताकि जैसे ही गुस्सा आया, लगा कि कुछ बोलने वाली हूँ, तुरंत कागज पेन निकाला और उस गुस्से को कागज के द्वारा अंकित कर दो, तो एक बार कागज पे वो गुस्सा उतर जाएगा।
1: बिल्कुल। और बाद में से इरेज कर सकते हैं,
0: उसे मिटा सकते हैं, आप मिटा सकते हैं, फाड़ सकते हैं कागज को कि आपका गुस्सा निकल गया, लेकिन मन आपका शांत हो जाता है। तो इसीलिए कहते भी हैं कि धैर्य रखिए, धैर्य का फल क्योंकि मीठा होता है। और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या है कि धैर्य रखने का जो कड़ा इम्तिहान है, एक तरह से ये बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है। अगर किसी से हमारी लड़ाई हो गई, किसी ने हमारी बात काट दी, तो हम गुस्से में आ जाते हैं, सड़क पर ट्रैफिक मिल गया तो हम परेशान हो जाते हैं, मोबाइल में हम इतना कुछ लिखते हैं, अगर हमें लाइक नहीं मिले पर्याप्त, किसी ने असहमति जता दी, किसी ने काट कर दी, किसी ने आपको पसंद नहीं किया, तो हम गुस्से से भनभना जाते हैं और लगते हैं क्या जो बात कर देंगे, और बात गर्मा गर्म स्थिति तक पहुंच भी जाती है।
1: बिल्कुल। अक्सर ट्रैफिक में तो अक्सर ही ऐसा होता है ना कि लोग एकदम से लड़ पड़ते हैं कि क्यों आप आगे निकल, अगर कोई आगे निकल जाए, कोई पीछे रह जा रहा है, तो वो लड़ रहे हैं। मतलब कोई भी किसी भी बात पर हम लड़,
0: मतलब
1: सकते हैं।
0: हम अपने वाहन में बैठे बैठे भी गुस्सा निकाल देते हैं और इतने गुस्से में आ जाते हैं कि कई बार हम इस तरह की पढ़ भी रही हैं स्थितियां कि ट्रेनों में दो लोगों के बीच में तकरार हुई और बात कहां से कहां पहुंच गई, यानी सहनशीलता की कमी होना।
1: बिल्कुल। और सहनशीलता का मतलब हर बात को चुपचाप सह लेना भी नहीं होता है। और जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, उस समय आप थोड़ा सा धैर्य अगर हम बना के रखते हैं ना, और दूसरों के विचार को सुनते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कोई भी बात हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने से ये होता है ना कि हम गुस्से में होते हैं उस समय, तो उस समय हमें पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो हम सिर्फ गुस्से में अपनी गुस्सा निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो रिश्ते भी उससे खराब हो सकते हैं, दोस्ती टूट सकती है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी सोच समझ।
0: इसलिए तोल मोल की बोल कहा जाता है ना। और आज की जो टेक्नो समय जो आ गया है, इसमें क्या हो गया आरती, कि हमें हर चीज तुरंत पाने की आदत हो गई, एक क्लिक में हमें सारी चीजें मिल जाती है, सामान हुआ कुछ भी कुछ ही सेकंड से हमें मिल जाता है। एक समय होता था जब हमें सोचना पड़ता था कि हमें जाना है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, अब बस केवल एक क्लिक करने की जरूरत होती है और सामान आपके घर पर आ जाता है।
1: पांच मिनट का अगर सामान हमारे पास 5 मिनट में नहीं पहुंचा, तो एकदम से हम गुस्से में आ जाते हैं, फिर हम उसको फिर चिल्लाने लगते हैं जो सामान लेकर आया, कि 5 मिनट से 1 मिनट कैसे ज्यादा हो गया,
0: ज्यादा कैसे आपने कर दिया। सोचिए हमारी सहन शक्ति कितना जवाब दे गई है। तो ये जो तनाव है, काम का जो दबाव है, प्रतिस्पर्धा है, और ये जो रोज की दिनचर्या में इतनी व्यस्तता है, हमारी झुंझलाहट को और हमारी स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है।
1: बिल्कुल। और जरा सोच कर देखिए, जब कोई हमारे संदेश का तुरंत जवाब नहीं देता है, तो मन में पहला विचार क्या आता है कि आखिर आया क्यों नहीं जवाब,
0: क्या
1: जो लिखा था क्यों नहीं आया उसका जवाब, शायद मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। हम अक्सर जल्दबाजी में पूरी बात जाने बिना नतीजे पर पहुंच जाते हैं और यहीं से गलतफहमी शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। हो सकता है आपने कोई सवाल पूछा और सामने वाले के पास टाइम नहीं हो, या वो उस वक्त यात्रा में हो या परेशानी में हो, जवाब नहीं दे पाया हो, हमने उसका तुरंत अपने तरीके से उत्तर निकाला और फटाफट उसे अपना ही जवाब दे डाला। और
1: ये हो सकता है वो नहीं देना चाह रहा उस समय,
0: ये भी हो
1: कुछ सोचना चाह रहा हो, समझना चाह रहा हो, या उसके बारे में पड़ताल करना चाहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी स्थिति हो सकती है। तो सहनशीलता की जो कमी है, वो उसका असर हमारे व्यवहार पर ही नहीं पड़ता आती, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है, हम जानते हैं। और परिवार में छोटी सी बात पर बहस, दोस्तों में नाराजगी और कार्यस्थल पर मतभेद होना, इन सब के पीछे कई बार हमारी ये जो अधीरता है, यही जिम्मेदार होती है।
1: बिल्कुल। सोशल मीडिया ने भी हमारी सहनशीलता को कम करने में बड़ी बड़ी भूमिका निभाई है। अलग विचार रखना लोकतंत्र और समाज की स्वाभाविक विशेषता होती है, लेकिन असहमति को व्यक्तिगत विरोध मान लेना रिश्तों और सामाजिक संवाद दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। कि असहमति अगर कोई हमसे असहमत है तो हमें लगता है कि वो हमारे विरोध में है, हम उसके विचार को नहीं जानना चाहते, वो किस तरह से क्या सोच रहा है वो उसको नहीं जानना चाहते, बस हम सोचते हैं कि ये हमारे विरुद्ध है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम उसका सम्मान भी नहीं करना चाहते कि उसके विचारों का हम सम्मान करें। अगर वो हमारे विरुद्ध कोई बात कह भी रहा है तो पहले समझें कि वो क्यों कह रहा है।
1: सबका अपना अपना नजरिया
0: विचार हो सकता है, नजरिया हो सकता है आपके प्रति, और सहनशीलता को बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए ये जरूरी है कि हम धैर्य रखें, धैर्य पूर्वक दूसरे को सम्मान दें, सुने, दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का मौका दें और गुस्से में तुरंत जवाब नहीं दें, कुछ देर रुके, सोचें, दूसरे की सोच को समझें, क्योंकि जरूरी नहीं कि सामने वाला गलत ही हो और हम ही सही हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही जरूरी बात ये भी है कि हमें छोटी छोटी बातों को जाने देना सीखना होगा। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, और कई बार हमारी चिड़चिड़ाहट हमारे जो सामने है उसके सामने वाले की गलती से ज्यादा हमारी अपनी थकान और तनाव का परिणाम होती है, जो हम चिड़चिड़ा रहे होते हैं इस समय। तो हम अक्सर सहनशीलता को कमजोरी मान बैठते हैं, जो बिल्कुल गलत सोच है।
0: बिल्कुल, हमें लगता है आक्रामक रूप बनाए रखना ही आज के जमाने में बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं होता। आपकी सहनशीलता बहुत बहुत मायने रखती है आपके लिए,
1: एक अलग पहचान बनाती है। कि इतना सब सामने वाला इतना गुस्सा हो रहा है, इतना चिल्ला रहा है ना, लेकिन आप एकदम शांत खड़े हैं,
0: आपने अपनी सहनशीलता को बनाए रखा है, कितनी बड़ी बात है। इसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए, हम समझते हैं कि अरे सामने वाला कितना कमजोर है, देखो इतना सुनने के बाद भी चुप बैठा रहा, मैं होती तो ऐसा कर देती, है ना। ये जो
1: चुप बैठना है सबसे बड़ी ताकत,
0: बहुत बड़ी, और सामने वाले को भी हिलाकर रख देती है,
1: बिल्कुल,
0: है ना आपकी चुप्पी। तो सहनशीलता का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं है, और देखा जाए तो अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रण रखें, अपने आप अपने भीतर एक बहुत बड़ी ताकत महसूस करेंगे। इसके अलावा हम दूसरे को धैर्य से सुने, रिश्तों को समझें, और कम बोले, सोच समझ कर बोले तो विवाद भी कम होगा, और जब हम किसी की असहमति का सम्मान करेंगे तो लोगों में हमारा संवाद भी मजबूत होता है।
1: बिल्कुल, और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर मतभेद को विवाद बनाना भी जरूरी नहीं है, और हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी थोड़ा ठहर जाना, और सबसे जो कहते हैं ना सबसे बड़ा समझदारी वाला कदम होता है
0: वो ये,
1: तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, और दूसरे को भी समझने की कोशिश करिए कि अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है क्या है, तो उसके बिना आप एकदम से प्रतिक्रिया मत दीजिए,
0: मत दें, और स्पेस दें खुद को भी और दूसरे के विचारों को भी, ताकि सोचने समझने का मौका मिले। एक श्रोता लिखते हैं कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति है, ये हमें सिखाती है कि हर उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता, कुछ उत्तर स्वयं समय दे देता है, सहन करने की अपनी गरिमा है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते खामोशी से बच जाते हैं और कुछ सच वक्त के साथ सामने भी आ जाते हैं,
1: है ना। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि सहनशीलता का मतलब हर बात सहना नहीं बल्कि हर बात पर रिश्ता को तोड़ना नहीं होता है, कुछ बातों को समझकर कुछ को मुस्कुराकर छोड़ देना ही शायद रिश्तों की सबसे खूबसूरत समझदारी है।
0: और हमारी एक श्रोता ने बहुत सुंदर कविता लिखी है हमारे आज के जो भी सेगमेंट है से उन पर, कि मंदाकिनी जी की मधुर आवाज, आरती जी का साथ, सखी सहेली सजाए हर दिन नई बात, लोकतंत्र का संदेश, सहनशीलता की पुकार, सुमिता घोष संग रंगसूत्र की सुंदर बहार, कान भरना मुहावरे की दुनिया का ज्ञान, खाने की अतरंगी आदतों से मुस्कान, विविध भारती की ये प्यारी सी महफिल, मंदाकिनी जी आरती जी बनाए हर पल दिलकश मंजिल।
1: बहुत अच्छा लिखा है। तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में कोई भी निर्णय लेते समय सहनशीलता की बड़ी जरूरत होती है, मगर आज के युग में जो चीज सबसे ज्यादा इंसानों के अंदर से खोती जा रही है वो है सहनशीलता का गुण। आक्रामकता को इंसान अपना गुण मानने लगा है, जीवन में आक्रामकता पूरा धागा ही उलझा देती है, ये इंसान सोचता ही नहीं। सहनशील और धीर गंभीर इंसान की छवि अलग ही दिखती है, सो सहनशील बनिए और जीवन को सुगम बनाइए।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां सहनशीलता है वहां प्रेम, सम्मान और रिश्तों की गर्माहट भी बची हुई है, वरना आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है, बस ठहर कर सुनने और समझने का धैर्य कम होता जा रहा है। छोटी सी बात पर नाराजगी, जरा सी असहमति पर रिश्तों में दूरी और अपनी बात मनवाने की जिद सहनशीलता को धीरे धीरे पीछे छोड़ रही है। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल, एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि खत्म होती जा रही सहनशीलता का कारण मानसिक तनाव है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगातार देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण मानसिक दबाव और धैर्य की कमी होती है। इसमें सोशल मीडिया का भी काफी प्रभाव है। इसके द्वारा तुरंत मिल रही जानकारी या मिल रहे मैसेज ने पुराने जमाने के खत लिखने के धैर्य भरे दौर को खत्म कर दिया है। मतलब हम तो सोच समझ के लिखते रहे, दो दो तीन तीन दिन में खत
0: पहुंचते थे
1: जी, तो वो मजा इस टेक्नोलॉजी में कहां जो खतों के इंतजार में पोस्टमैन की राह तकते रहने में हुआ करता था। सहनशीलता पाने के लिए तनाव को छोड़कर शांत लहरों पर जीवन की नाव पर सवार होना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है। और अब हम भी गीत संगीत की नाव पर सवार हो जाते हैं,
1: गीत सुनते हैं।

0: तो आरती, जब हम बात कर रहे हैं आदतों की कि हमारे अंदर सहनशीलता का होना कितना जरूरी है, वहीं कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो हमारी हमें हंसी का पात्र भी बना देती हैं, है ना। अभी बताऊं तुम्हें, आज जब मैं सुबह चाय के साथ बिस्किट खाती हूँ हमेशा, आज मैंने सोचा कि नमक का पराठा खा लूं और चाय में डुबो कर खा लूं, है ना, तो कैसा लगेगा। और बाद में मुझे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाई, क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन मैं सोच रही थी, ये खाने का भला कोई ऐसे खाता है क्या।
1: लेकिन सबसे मजा आता है।
0: तुमने खा के देखा है इसको?
1: बिल्कुल मैंने खाया है।
0: ठीक है।
1: और मतलब हर व्यक्ति का खाने का अंदाज अपना अपना होता है। किसी को गरम गरम रोटी के साथ ठंडी ठंडी दही पसंद होती है, तो कोई चाय के साथ नमकीन की जगह बिस्किट को चाय में डुबोकर खाने का मजा लेता है। कुछ आदतें इतनी अनोखी होती हैं कि सामने वाला देखकर बस यही कहता है कि भला ऐसे भी कोई खाता है। जैसे कि मैं खाती हूँ कैसे, जलेबी को सॉस में
0: डुबोकर।
1: जी।
0: और मैंने देखा हमारी एक नून है, वो पहले दाल पी जाती है और उसके बाद जो चावल है ना वो सूखे खाती है। तो हम उन्हें हंसते थे कि अब आप क्या गोल गोल लौटने वाली हैं कि दाल चावल मिल जाएगा आपका। वो ऐसे ही खाती थी, पहले दाल का कटोरा जो लिया और दाल पूरी पी ली, उसके बाद वो सूखे चावल, जो सफेद चावल हम उबाल के रखते हैं, उन्हें खाती थी। तो ये भी एक अजीब ही किस्म की आदत है, जिसे हम कई बार जब देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। बच्चों में तो ऐसी आदतें हमें मिल जाती हैं कि सब्जी अलग रोटी अलग, दाल को चावल के साथ मिलाने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कुछ लोगों को मैंने, जैसा तुमने कहा, मीठी जलेबी और सॉस के साथ खाती हो तुम, और कुछ लोग खाने को बहुत धीरे धीरे चबाकर खाते हैं, जबकि कुछ लोग फटाफट एक रोटी को दो ही उसमें खा लेते हैं टुकड़ों में। तो ये खाने के जो तरीके हैं, हालांकि हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात कि इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी खा रहे हो लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। जैसे कि हमारी एक श्रोता है जो लिखती है कि आज खाने की अतरंगी आदतें देखकर मुझे भी कुछ याद आ गया। मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए, और जिस घर में रहने के लिए आए वहां के मकान मालिक के बच्चों को हमने देखा कि वो चावल के साथ दूध का पाउडर खाते थे। उनको देखकर हमें भी शौक चढ़ा पर हम लोग नहीं खा पाए। सच में तो बहुत ही अलग चीज है।
0: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखती है कि खाने की भाई आदतें सभी की अच्छी हो ऐसा नहीं हो सकता, और यदि है तो फिर कहनी ही क्या। लेकिन अतरंगी शब्द या ये तो कार्यक्रम से स्पष्ट हो सकता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि हमारे मूड, दिमाग और विज्ञान से गहराई से भी जुड़ा है। भावना और मूड का असर खाने की तीव्र इच्छा अक्सर तब होती है जब हम तनाव में होते हैं या हमें किसी अपने की याद आती है। कई बार खाने के तुरंत बाद घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि हमारा पेट हमारे दिमाग से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। अगर नाक बंद हो तो हमें खाने का असली स्वाद पता ही नहीं चलता, और 80% हिस्सा हमारी सूंघने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। और अचानक कभी कभी किसी खास चीज को देखने से भोजन से अरुचि हो जाती है, या हमें कह जैसे उल्टी महसूस होने लगती है। तो जब तक आपकी तीव्र इच्छा नहीं हो आप कोई भी चीज नहीं खाएं, ये ध्यान रखिए।
1: जी। और एक हमारी सखी है जो लिखते हैं कि सखियों, कभी कभी हरी मूंग की दाल वाली खिचड़ी में गुड़ डालकर खाया है कभी? बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा।
1: तो इन्होंने यानी खिचड़ी में गुड़ डाल के खाया। तो ये भी हमें करना चाहिए ट्राई, इसका मतलब। और हमारे साथी जो लिखते हैं कि खाने की अतरंगी आदतें, भाई आदतें तो सभी अच्छी ही हों ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि है तो फिर कहना ही क्या। लेकिन अतरंगी शब्द है या अतरंगी, ये इन्होंने कार्यक्रम में स्पष्ट होगा तो अमीन को शायद स्पष्ट हो गया होगा।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर वालों की आदत है कि कटोरे में ही दाल सब्जी को मिला के मिक्स करके खाते हैं, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे घर वालों को लगता है कि जो मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको कि खाना खाने से इससे

0: स्वादिष्ट लगता है, मतलब एक ही कटोरे में दाल चावल मिक्स करके खाया जाए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही मेरे घर वालों की आदत है समोसे में सब्जी को पूरी तरीके से मिक्स करके खाने की, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और लोग कहते हैं कि एक बार खाकर तो देखो, पर मैं इसे आज तक नहीं खा पाई। इन दोनों ही तरीकों को मैं कभी भी नहीं मतलब ये इसको स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं कि कभी दाल भात को साथ नहीं खाया इन्होंने एक कटोरे में लेकर, और ना समोसा खा पाए हैं।
1: अच्छा, तो होता है ना कुछ अतरंगी आदतें ऐसी होती है ना कि समझ नहीं आता कि ये ऐसी क्यों होती है, मतलब इस तरह से हम कैसे खा लेते हैं। दूसरे को जब हम खाते देखते हैं ना तो लगता है कि कैसे खा रहा है इस तरीके से।
0: हाँ, एक लिखते हैं कि हमें कभी कभी बूंदी में सेव मिलाकर खाना अच्छा लगता है। हाँ, ये तो होता है। हाँ। बूंदी और जो भुजिया जिसे हम नमकीन भुजिया उसे मिलाकर लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन हर एक को वो भी पसंद नहीं आता है।
1: बिल्कुल, सबके अपने अपनी आदतें अलग अलग तरीके से होती हैं।
0: हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि हल्की फुल्की आदतें, अतरंगी खाना खाने की आदत, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बड़े अलग तरीके से खाना खाते हैं। और जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे कुछ याद आ गया, मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए, और जिस घर में रहने आए वहां के मकान मालिक के बच्चे को हमने देखा कि वो, अच्छा अभी तुमने बताया कि चावल के साथ वो दूध, अमूल दूध इस्तेमाल करके खा रहा था, तो ये देखकर उन्हें बड़ी हंसी आई। उन्होंने इसको खा के देखा लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और एक लिखते हैं कि मुझे चाय के साथ कुल्फी चूसना बेहद पसंद है।
1: अरे भैया, चाय के साथ कुल्फी, सर्दी में बिल्कुल अलग है।
0: हाँ, वैसे मुझे भी एक साथी मिले और उन्होंने कहा कि अभी कॉफी पी है, चलिए अब जो है हम आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद उन्होंने कहा कि चलिए अब गर्म गर्म दूध पी लेते हैं। मैंने कहा भाई ये कैसी आदत है आपकी, लेकिन वो आराम से कर रहे थे इन बातों।
1: बिल्कुल नहीं, जिनको आदत होती है ना इस तरह की चीजें खाने की तो उनको कोई परेशानी नहीं होती,
0: लेकिन हमें तो हो जाती है। अभी हमारी श्रोताओं को हो जाएगी अगर हमने उन्हें एक गाना नहीं सुनवाया तो।

0: तो हमारा एक सेगमेंट तो रह गया अभी, यानी कान भरना, मुहावरों की दुनिया
1: बात है। हाँ हाँ।
0: तो कान भरना, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कान भरना मतलब कान में कोई भौतिक चीज या वस्तु को भरना नहीं होता है। इस मुहावरे का अर्थ किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत, चुगली करना या उसके प्रति गलत भावना या संदेह पैदा करना होता है। गुजराती में इसे कान भंभेरणी बोला जाता है।
1: अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना यानी चुगली करना।

0: ना, मेरे हिसाब से चुगली करने वाले से ज्यादा गलती चुगली सुनने वालों की होती है, क्योंकि यदि हमसे कोई चुगली कर रहा है और अगर हम उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएं तो सामने वाला दोबारा चुगली करने की कोशिश भी नहीं करेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि किसी के मन में दूसरे के प्रति गलत या नकारात्मक बातें डालना, उसे भड़काना, जैसे कि हम कोई दो लोग अच्छे मित्र हैं तो उनके बीच में तीसरे व्यक्ति ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया किसी दूसरे के कान में, तो इससे दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा हो जाए, तो इसे कान भरना कहते हैं।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना, भाई कान है तो भरे ही जाएंगे ना। फिर कर्ण पूरण की विधिवत विधि भी बताई गई है, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कर्णेन्द्रिय का विकास भी होता है, किंतु यहाँ कान भरने का तात्पर्य किसी के खिलाफ किसी को उकसाने मात्र से ही है, और कच्चे कान वाले लोग इसके शिकार शीघ्र बन जाते हैं, और इस दृष्टिकोण से ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और एक और हमें जो श्रोता जो लिखते हैं कि चुपके से किसी के खिलाफ ऐसी बातें कहना जिससे कि वो सामने वाले व्यक्ति से नफरत करने लगे या उस पर शक करने लगे। ऐसा माना जाता है कि यदि खाने में जहर मिल जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन कानों में घोला गया जहर रिश्तों को अंदर से खोखला बना देता है और इसका कोई आसान इलाज भी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और कई इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है जब हम जिक्र करते हैं कान भरने का। तो अब तो कार्यक्रम का समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और कान भरें अपने श्रोताओं के।
1: बिल्कुल।
0: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्युलॉइड के सितारे। श्रोताओ, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
1: कमलजीत जी नमस्ते।
2: नमस्कार।
1: आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।
2: जी
1: अच्छा, आज के माहौल में जब टीवी का बोलबाला है और आप करीब हर चैनल पर नजर आते हैं, तो कैसा लगता है ये सब देखकर?
2: बड़ा अच्छा लगता है सविता जी, क्योंकि कलाकार अगर काम अच्छा कर रहा हो और वो ऑडियंस उसे सराहती है तो कलाकार का उत्साह बढ़ता है, वो और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है, तो ये सब अच्छा लगता है कलाकार को।
1: अच्छा, आप तो अभी टीवी के स्टार बन गए, फिल्मों में नाम तो आपका बहुत हुआ बतौर हीरो, लेकिन कभी ये सोचकर मलाल नहीं होता कि मैं स्टार नहीं बन सका?
2: देखिए, सिनेमा से मुझे बहुत इश्क है, अब भी है, पहले भी था, क्योंकि मैं बेसिकली फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, तो सिनेमा से तो मुझे बहुत लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन वहां न बन सका इसका मलाल मुझे नहीं है। अब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में मैं समझता हूँ कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है कि मैं फिर से वापस सिनेमा करने लगूं, लेकिन शर्त यह है कि मुझे मेरी पसंद के रोल अगर मिलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कोई भी रोल तो मैं करूंगा।
1: तो इसी बात पे गाना हो जाए आपकी पसंद का?
2: जरूर।
1: कौन सा गाना सबसे पहले सुनाना चाहेंगे आप?
2: जिन दिनों जब मैं फिल्में किया करता था
1: जी,
2: तो उस जमाने की एक फिल्म का जो मेरी सबसे पहली ऑलमोस्ट फिल्म थी शंकर हुसैन, उसमें गाना था बड़ा खूबसूरत, लता जी ने गाया था, अपने आप रात

0: आपने संघर्ष तो खूब किया
1: जी।
0: और बहुत समय लगा मुझे लगता है पहचान बनाने में, तो ये पहचान आपकी कैसे बनी?
1: ओके, कुछ लोगों की इमारत जो है सबसे पहले बन जाती है, वो दिखने लगती है, कुछ लोग बुनियाद काफी देर तक बनाते रहते हैं तो मेरे हिस्से में मेरा ख्याल बुनियाद ने काफी टाइम ले लिया, और फिर जब बुनियाद मिली तो उसके बाद लोगों ने काम भी अप्रिसिएट किया और फिर काम मिलना भी बाकायदा शुरू हो गया।
0: मेरे ख्याल बुनियाद की बात निकली तो बुनियाद सीरियल भी आपका काफी हिट हुआ था
1: जी, उसी
0: से बात बनी ना?
1: जी जी जी, उससे काफी टेलीविजन में काम मिला उसके बाद।
0: अच्छा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या एक अजीब सी बात है कि आपकी फिल्म हिट होती है तो इसका फायदा तो सबको होता ही है, तो क्या सीरियल में भी ऐसा चलन है? क्योंकि चैनलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप बहुत से सीरियल कर रहे हैं, सांस है, बुनियाद, दरार, किस्मत, फरमान वगैरह, तो ये कॉम्पिटिशन को आप कैसे फेस करते हैं?
1: ये सब ऐसा ही है जैसे फिल्मों में होता है, मतलब फिल्में अगर आपकी चलती हैं आपको काम मिलता रहता है, सीरियल आपको आपके चलते हैं या चल रहे हैं, आपका काम अप्रिसिएट हो रहा है तो आपको काम मिलता रहेगा। देखिए, बेसिकली अगर आप डॉक्टर हैं, आपके पास अगर पहले दो मरीज आए और वो आपके हाथों मारे जाए तो फिर मेरा ख्याल आपके पास कोई दूसरा मरीज नहीं आएगा। तो ऐसा ही है, एक्टर की अगर पहली फिल्म या पहले दो तीन सीरियल चल गए तो उस बेचारे को काम मिलता रहता है, वरना उसी डॉक्टर वाला हिसाब होता है।
0: अच्छा, आपने फिल्में भी बहुत की और सीरियल भी बहुत किए, शंकर हुसैन फिल्म की आपने, फिर सत्ते पे सत्ता की, अशांति की, माचिस हाल ही में की, एक शर्त भी फिल्म की थी, और सीरियल तो आपने मेरे ख्याल से सैकड़ों कर लिए, तो फिल्म और सीरियल
1: आप शिकायत कर रही हैं या बता रही हैं?
0: क्योंकि मैं तो रोज ही जब टीवी ऑन करती हूँ तो आप ही आप दिखाई देते हैं।
1: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो असल में ये कई लोग ये सोचते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो नए चैनल्स आए हैं इसमें प्रोग्राम्स क्योंकि रिपीट होते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत आ रहा है, पर मैं ज्यादा काम लेता नहीं हूँ, उतना ही लेता हूँ जितना मैं अच्छी तरह निभा सकूँ जिसे।
0: अच्छा, एनीवे
1: तो क्या कह रही थी आप?
0: फिल्म और सीरियल आप करते हैं इकट्ठे, तो अभिनय में क्या कुछ फर्क होता है? जैसे कि स्टेज और फिल्म में अभिनय का फर्क होता है, इस तरह से सीरियल और फिल्म में भी फर्क होता है?
1: नहीं, अभिनय में फर्क थिएटर और सिनेमा में शायद हो, और है भी थोड़ा सा, वहां पे एक दो सुर ऊपर करना पड़ता है थिएटर में। जी हाँ, थिएटर में
0: जी।
1: सिनेमा में क्योंकि एक एक आपकी टाइट क्लोजअप में, इतने बड़े क्लोजअप में आपका एक एक नस दिखती है कैमरे को, तो उसमें आपको इतना एग्जैजरेट नहीं करना पड़ता। ऐसा ही मैं समझता हूँ टेलीविजन और सिनेमा में एक्टिंग में कोई फर्क नहीं। हाँ, डायरेक्शनल टेक्निक्स में फर्क हो सकता है भी, क्योंकि ये मीडियम जो टेलीविजन का है वो क्लोजर मीडियम है शॉर्ट्स का, लेकिन एक्टिंग के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ। आप जैसे अपना कैरेक्टर किरदार वहां निभाते हैं सिनेमा में, वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ता है।
0: ये फिल्म में तो बहुत ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ती है ना?
1: क्यों हम लोग टेलीविजन में नहीं दिखाते? मेरा ख्याल हम लोग टेलीविजन में ज्यादा ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं।
0: यही बात तो उगलवाना चाहते,
1: गुस्सा आ गया, गुस्सा दिलवा के।
0: अच्छा, जब शुरू में सीरियल बनने शुरू हुए थे तो फिल्मी एक्टर से, माफ कीजिए, छूत की बीमारी समझते थे, कहते थे कि नहीं, छोटे से बक्से में कौन अभिनय करेगा सविता जी, अब तो बड़ा एक्टर जो भी है वो सब सीरियल में ही अपने आप को कैश कर रहे हैं। क्या ख्यालात हैं इस बारे में?
1: देखिए, मेरे ख्यालात जो हैं इस बारे में बड़े सीधे और ये हैं, मैं सिनेमा को नंबर वन समझता हूँ, बट टेलीविजन का शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे काम दिया और मेरा किचन चलाया, लेकिन सिनेमा जैसा मैजिक टेलीविजन पर नहीं है और नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीविजन जो देखा जाता है वो ऐसे माहौल में देखा जाता है जहां पे और इतनी 100 डिस्ट्रैक्शन है, आपका बच्चा रो रहा है, बीवी खाना बनाना है, वो उसने स्कूल जाना है, कल के स्कूल की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। सिनेमा एक हॉल में देखा जाता है, इट इज अ ग्रेट मैजिक, इट इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक अचीवमेंट आई थिंक सिनेमा इज। तो मेरे लिहाज से अगर मुझे आज कहा जाए सिनेमा और टेलीविजन में कौन सा बेटर मीडियम है, डेफिनेटली सिनेमा है, लेकिन क्योंकि सर्वाइवल हर एक को सर्वाइव करना है यहाँ, तो जो सिनेमा में नहीं है वो टेलीविजन में है, जो सिनेमा में बहुत अच्छा जिनका

0: करियर जा रहा है वो टेलीविजन में नहीं आना चाहते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल।
1: बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसी बात पे, इसी अच्छी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए।
0: तो फिर अच्छे से शायर का ही सुनाते हैं
1: जो आपको पसंद
0: है। गालिब की एक गजल है मुझे बड़ी पसंद है और जगजीत ने बहुत खूबसूरती से गाई है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
1: वाह वाह वाह।

0: कमल जी, पहले एक्टर स्टेज को स्टेपिंग स्टोन बना के फिल्मों में आते थे, मतलब प्रवेश करते थे, और अब उल्टा हो रहा है कि फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं। ये उल्टी हवा कैसे बह निकली?
1: फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं, मेरा ख्याल इसलिए आ रहे हैं जो फिल्मों से निकाले जा रहे हैं, उसी में आ रहे हैं। सीधी बात है।
0: निकाले नहीं जा रहे, दोनों जगह काम कर रहे हैं।
1: जिनको काम नहीं मिला, जिनको मैंने वही पहले ही अर्ज किया है कि अगर जो जिसका करियर बहुत अच्छी तरह चल रहा है फिल्म में, वो टेलीविजन में नहीं आना चाहता है, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, ऐसी कोई वही बात नहीं है, और ऐसा उसको अपटी बिहेवियर समझा जाए ऐसा भी नहीं मैं समझता।
0: मतलब रोजी रोटी का सवाल है।
1: नहीं, रोजी रोटी के
0: शायद
1: भाई वो क्यों लेसर मीडियम में आएगा? अगर मैं नॉवल लिख रहा हूं तो मैं रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर के लिए क्यों करूंगा? सीधी बात, अगर मेरा नॉवल बिक नहीं रहा है तो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करूंगा, ये है।
0: अच्छा, स्टार सिस्टम, इसका फिल्म जगत में साम्राज्य है जो लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ ऐसा होता है कि चेहरे बदल जाते हैं, और अब यही बात सीरियल में भी लागू होती है। आपके क्या विचार हैं?
1: वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मीडियम जो हैं सारे ये हम मूवी बिजनेस कहते हैं, टेलीविजन बिजनेस है।
0: बिजनेस,
1: जी हाँ। तो जब तक आपके प्रोग्राम बिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलेंगे। एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे तो चैनल कैसे रन करेगा? तो चैनल नहीं रन करेगा तो वो फिर पूरा विशेष सर्कल है बड़ा। तो इसमें जो एक्टर्स जो थोड़े बहुत ऊपर हैं, टॉप लेवल पे हैं, उनके प्रोग्राम हिट हो गए हैं या उनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो और क्योंकि लोग ज्यादा पसंद करते हैं तो चैनल कहता है कि भाई इन एक्टर्स के साथ बनाओ।
0: मतलब यह ऐसा तो नहीं जो पैसा लगाता है वो बोलता है हमको यही चाहिए, जैसे फिल्मों में प्रोड्यूसर पैसा लगाता है?
1: नहीं नहीं, हाँ तो ऑब्वियसली जो पैसा लगाता है वो ये सोच के लगाता है कि मुझे पैसा रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न में आएगा पैसा, वापस आएगा। जो लागत है मेरी वो कम से कम वापस वसूल होगी। तो वो कैसे होगी? पॉपुलर एक्टर को लेंगे आप, पॉपुलर हर जो चीज है जो डिमांड में है, जिसे सराहा जा रहा है इस वक्त, पब्लिक उसे चाह रही है, उसे ही आप लेके बनाएंगे ना।
0: अच्छा, जो ऐसे एक्टर हैं जिनको काम नहीं मिलता तो उनको क्या करना चाहिए आपकी राय में?
1: आप देखिए, हमें भी तो काम नहीं मिला था इनिशियली।
0: फिल्मों में भी काम नहीं मिलता और सीरियल में भी काम नहीं मिलता।
1: एक तो
0: कहाँ तो उम्मीद जगी थी कि सीरियल बन रहे हैं, तो जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता उनको सीरियल में भी मिलेगा।
1: देखिए, अपने बारे में ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है जिंदगी में। जब आदमी यहाँ पे ट्रेन में बम्बई में उतरता है तो वो ये आप उससे पूछें भाई तेरा अपने बारे में क्या विचार है, क्या राय है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता मेरा करियर यहाँ बनेगा और मुझे लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। ये कोई कहता है?
0: कोई नहीं कहेगा।
1: तो फिर तो या तो अपने बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिव आदमी हो, अपने आप को एक साल दे, दो साल दे, ढाई साल दे, तीन साल दे, या फिर बाप बहुत रईस हो, समझे ना, जिसे कोई फर्क ना पड़े कि बेटा कर रहा है स्ट्रगल तो करता रहेगा। तो अब ये तो अपने पे निर्भर करता है कि मैं अपने आप को कितना वक्त देता हूं और मैं कितना मतलब मुझे कितनी अपने बारे में समझ है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूं कि मैं कहूं कि यार बस अब बहुत हो गया, लेट अस ट्राई समवेयर एल्स।
0: कमल जी, जिंदगी का सफर तो हमेशा चलता रहता है, जैसे सुख दुख आते हैं इसी तरह फिल्म सीरियल और सीरियल फिल्म, ये चक्र घूम रहा है, बरसों से घूम रहे, कहीं ये थम गया तो क्या होगा, ये सोचकर कैसा लगता है?
1: हाँ, बहुत डर लगता है। देखिए, हर आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका काम कब अच्छा चलता रहे और कब तक चलता रहे इसका कुछ भरोसा नहीं। तो ये तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है हर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को और हमारे कॉम के लोगों को यानी एक्टर्स को, कि भाई ये जो इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है ये कल को ऐसा ना हो कि सब हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएं और हमें काम ही ना मिले, क्योंकि हम तो एक ही काम जानते हैं ये, और यही मिलना बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे? हमने माना दिल्ली में रहें मगर खाएंगे क्या?
0: अच्छा, आपकी पत्नी भी तो इसी मीडिया में है, तो आप दोनों अपने इस प्रोफेशन को, अभिनय को, किस तरह से एडजस्ट करते हो? कभी प्रोफेशनल जेलेसी का सामना तो नहीं करना पड़ता?
1: नहीं नहीं, क्यों, मैं जेलेसी इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है तो इसका मुझे अंदाजा है और मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल उसमें जितना सेक्रीफाइस, और मेरा ख्याल औरत जात में जितना सेक्रीफाइस करने की वो है
0: ताकत,
1: इसी वजह से जब से हमारे बच्चे हुए हैं अब तक उसने कोई काम नहीं किया। शी रिफ्यूज टू वर्क, मतलब वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की ग्रोथ में लगाना चाह रही थी। तो अब रिसेंटली उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट अभी साइन किए हैं, पायलट्स किए हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, मेरा छोटा बेटा आदित्य 5 साल का है, बड़ा सिद्धार्थ, तो ये जब तक छोटे थे तब तक उन्होंने कोई काम लिया ही नहीं, तो इस वजह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई वो बाहर है तो घर नहीं है। उसके जहन में घर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहां पे कुछ मतलब जहां पे सब सही रहना चाहिए।
0: ये तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट कहीं या सेक्रीफाइस
1: नहीं
0: पति के लिए?
1: नहीं नहीं, वो जब बहुत छोटी थी मेरी वाइफ अनुराधा, तो जब बच्ची थी खुद, तो उनसे पूछा जाता था भाई बड़े होके तुम क्या बनोगी, तो कहती थी मम्मी। तो उसे शुरू से बच्चों का शौक रहा है, घर का शौक रहा है, उसे घर को सजाने का, घर को बनाने का, और बेसिकली शी इज अ होम बर्ड।
0: तो इसी एक सुंदर सी बात पे कुछ आपकी पसंद का सुंदर सा गाना,
1: सुंदर सी बीवी के लिए।
0: हाँ, सुंदर सी बीवी के लिए क्यों नहीं।
1: तो चलिए बीवी की बात चलिए, तो फिर उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनाते हैं।
0: कौन सी फिल्म का?
1: उत्सव।

0: अच्छा, आप जब छोटे थे तो तभी से एक्टर बनना चाहते थे या बड़े होने पर इस तरफ रुझान हुआ? क्योंकि हमारे माँ बाप अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चे को बड़े होने पर डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे वगैरह वगैरह।
1: जी हाँ, क्योंकि मैं सहारनपुर का हूँ और मेरा ना कोई चचा ना कोई ताया ना कोई अंकल ना कोई आंटी यहाँ पे बम्बई में थी, तो जाहिर है मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि मैं बम्बई जाकर एक्टर बनूं। तो सहारनपुर में पढ़ रहे थे, थोड़ा बीच में मसूरी भी पढ़ा मैं, तो फादर चाहते थे कि मैं आईएएस पे जाऊं, पर इतनी पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं थी। थोड़ा वो शायरी का शौक था, जो दोस्त थे हमारे और आज तक वही दोस्त हैं सहारनपुर में, वो भी बड़े आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे, तो हमें फिल्में देखने का तो बड़ा शौक था। मैं दिलीप साहब का फैन था, देव साहब का फैन था बहुत बड़ा, और बल्कि हमारे ग्रुप्स होते थे, कुछ दिलीप साहब के फैन होते थे और उनके सामने आप दिलीप साहब की बुराई नहीं कर सकते थे, और कुछ दिले देव साहब के फैन होते थे, बाकायदा झगड़ा हुआ हो जाया करता था। लेकिन ये कि एक दिन मैं खुद एक्टर बनूंगा, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था।
0: तो कोई फिल्म देखी थी, उसका असर हुआ, कुछ तो बात हुई होगी?
1: नहीं,
0: या कोई ड्रामा किया, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ जहन पर, दिमाग पर?
1: मुझे बेसिकली क्या, सबसे जो जहन में प्राइम चीज थी वो ये थी कि अपने दो पांव पे खड़ा होना जल्दी से जल्दी जिंदगी में। तो जो भी उस वक्त कंपटीशन आते थे, जैसे एनडीए का आया, डिफरेंट का आया, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट होता था उसका आया, तो मैं सब कंपटीशन में बैठ जाता था, और बल्कि मैं एनडीए में ऑलमोस्ट हो भी गया था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो गया था उसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो जब ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी आया, तो वो मैंने फॉर्म चुपके से काट कर वो भेज दिया, और चुपके से, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि छोटे शहर में अगर ये पता लग जाए कि इसने फॉर्म भेजा था और ये सिलेक्शन नहीं हुई तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता कि भाई लौंडा हीरो बनने गया था, कुछ नहीं हुआ समझा तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कॉल आ गया,
0: स्कॉलरशिप भी मिलता था ना?
1: नहीं, स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता था।
0: नहीं
1: नहीं, इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप उन दिनों नहीं था, इन दिनों हो तो मुझे मालूम नहीं। तो हमारा दिल्ली में स्क्रीन टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, और हम सेलेक्ट हो गए।

0: अच्छा, अभी तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको भी इस लाइन में लाना चाहेंगे या वो जो खुद बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचा आपने?
1: जाहिर है, देखिए हर बाप ये कहता है जो बनना चाहता है बच्चा वो बने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ये उम्र कोई भी उम्र हो, तो वो इंडिकेशन देता है कि उसका रुझान किस तरफ है। तो बाप को यह कोशिश करनी चाहिए जिस तरफ उसका रुझान है उसे वो सब सप्लाई करे, चीजें, इंसेंटिव उसके शौक को पूरा करने के, तो वो अपना इवेंचुअली करियर बनाएगा। तो वो मैं देख रहा हूं मेरे बच्चों को, कुछ को एक को स्पोर्ट्स का शौक है, एक पढ़ाई का शौक है, तो अगर इसमें निकलते हैं और अगर उनको बीच में सिनेमा का भी हो जाता है और एक्टर बनना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, आई थिंक इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
0: अच्छा, आजकल के समय में फिल्म इंडस्ट्री को कला का गढ़ माना जाता है, गढ़ है ना, तो इसमें तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा कोई बता रहा था कि कलाकार हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी क्योंकि हर आदमी इसी लाइन में आना चाहता है, तो आपकी क्या ख्याल है इस बारे में?
1: मेरा ख्याल फिगर्स इससे बहुत ऊंचे होंगे, क्योंकि और आप इस बात की बात कर रही हैं, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहा था उस वक्त मेरा दोस्त एक इंजीनियर बनने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में गया था
0: जी,
1: उस वक्त 75,000 इंजीनियर खाली था। तो देखिए, एक क्लास में 60 लड़के होते हैं, पहले दो तीन ही आएंगे, पांच दो तीन थोड़ी आ जाएंगे, तो किसी का वो जो 60वां है, एक 60वां भी होगा वहां, तो उसको ये बात से घबराना नहीं चाहिए कि भाई मेरा नंबर 60 आया, अब तेरा नंबर 60 यहां आया, कहीं कोई और चीज जिनमें ट्राई करेगा वहां नंबर 1 हो जाएगा। तो अपने अपना पोटेंशियल खुद देखना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए, ये
0: मतलब इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। हाँ, चप्पा चप्पा कोशिश करते रहना चाहिए। इसी बात पे आपको वो जो गाना अच्छा लगता है, आप भी थे ना माचिस फिल्म में,
1: माचिस
0: हो जाए,
1: बिल्कुल हो जाए,
0: जलाइए चप्पा चरखा,
1: जलाइए माचिस
0: तो सुनते हैं वही गाना, चप्पा चप्पा चरखा चले
1: जी।

0: कमल जी, आपको कभी कभी फुर्सत भी मिलती होगी, मतलब जब समय मिलता है शूटिंग से, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं?
1: देखिए, जब मुझे समय मिलता है शूटिंग से, तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, तो अपने बच्चों के साथ और घर पे अपनी बीवी के साथ हम लोग इकट्ठा रहते हैं। और अगर कुछ एक दो दिन की ज्यादा छुट्टी हो जाए इकट्ठी, और बच्चों का भी वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो, तो हम लोग खंडाला भंडारा चले जाते हैं। तो ऐसे हमको, हम पूरे परिवार को, हमको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। तो अंग्रेजी में कहते हैं, ड्रॉप ऑफ अ हैट वी स्टार्ट फॉर एनी डायरेक्शन ऑन दिस अर्थ। तो इसीलिए मैं हर साल अपनी छुट्टियां जो है वो बच्चों की छुट्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, एक तो दिवाली में और एक समर वेकेशन उनकी, तो उनके साथ मैं छुट्टियों पे चला जाता हूँ।
0: तो इसी बात पे कोई बच्चों के लिए गाना?
1: बच्चों के लिए क्या गाना, वो जब छोटा था, छोटे थे, तो इनको एक गाना बड़ा पसंद था, और मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि वो उनकी उम्र का गाना है नहीं, लेकिन वो कुछ झूमने से लगता था, मेरा छोटा बेटा जो था, तो वो गाना है ना, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तो मेरे ख्याल से वो मेरे बेटे को चांद लफ्ज समझ में आता होगा, तो उस वजह से ही यूज्ड टू एंजॉय दैट नंबर, तो वो सुनवा देते हैं हम।
0: ठीक है, तो आइए सुनते हैं, रूप सुहाना लगता है।

0: अच्छा, कभी मन नहीं करता आपका भी कि मैं डायरेक्शन करूं?
1: आप दीजिए डायरेक्शन आप लाइए प्रोड्यूसर तो मैं ये भी कर डालूंगा।
0: 25 साल हो गए आपको लोगों की बातें सुनते कि ऐसा

0: ऐसा करो, अभी नहीं ऐसा करो, तो आपका तो दिल करता होगा कभी मैं भी कैमरे की बाग
1: कभी मैं उसका, मैं उस बंदे का कॉलर पकड़ के कहूँ कि अब तुम ऐसा करो। देखिए मैं यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करके पुणे से यहाँ आया था, बड़ा मजा आता है इस काम में, इस प्रोफेशन में, लेकिन एज यू गो ऑन तो आप भी बहुत कुछ अलावा एक्टिंग के और भी आपके जो मीडियम है से जुड़ी हुई चीजें वो सीखते हैं, साउंड के बारे में सीखते हैं, पिक्चर के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो ये मीडियम इतना फैसिनेटिंग है कि अगर मुझे कल को ये चांस मिलता है कि मैं डायरेक्टर डायरेक्शन करूं तो मैं जरूर इसमें भी एक क्या कहना चाहिए, गोता
0: चांस लेना
1: हाँ चांस लेना चाहूंगा।
0: फिल्म में या सीरियल में,
1: किसी में भी,
0: किसी में। अच्छा कहते हैं ना कि डायरेक्टर बड़े आर्टिस्टों को डायरेक्ट नहीं करता बल्कि आर्टिस्ट उन्हें डायरेक्ट करते हैं। ये क्या बात सही है?
1: पहली बात तो बड़ा आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। तो अगर आप मैंने आज तक कभी हमेशा अपने डायरेक्टर की सुनी है। हाँ देखिए आर्टिस्टिक डिस्कशन जो हमारी सेट पे होती है कि भाई अगर हम ऐसा कर लें तो शायद ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस लगे, अगर हम यूं डायलॉग लाइन को यूं करें तो शायद ये डायलॉग ही ना लगे और ऐसे लगे कि वाकई बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर्स के बीच में, तो इतना तो हमारा दखल है ही और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर नॉट पपेट्स, हम लोग कठपुतलियां नहीं है, एक्टर्स आर नॉट कठपुतलियां, हम सोचने वाले जीव जंतु हैं। और हमको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहता है कि ये लफ्ज जो है या ये लाइन ये डायलॉग ही लगेगी, क्लीशेड लगेगी, मेलोड्रामेटिक लगेगी या के सच्ची लगेगी। सच्चा लगना बड़ा जरूरी है।
0: ये सच्ची बात जो है आपने बोला, सच्चा लगना जरूरी है। कहते हैं कि अच्छा एक्टर वही होता है जो कि अच्छा इंसान होता है, तो ये बात भी क्या सही है? मैंने देखा है कई एक्टर बड़े अच्छे हैं बट बेसिकली दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स।
1: मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी एक्टर अच्छा है, अगर आर्टिस्ट अच्छा है, चाहे वो पेंटर है चाहे वो एक्टर है, तो उसके काम से आप लुत्फ लीजिए ना, वो बुरा है या अच्छा है भाड़ में जाए।
0: वाह वाह बहुत अच्छा। अच्छा कभी आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहां से आपने शुरुआत की और उसके आप तो बहुत सीढ़ियां आगे चढ़ लिए, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे बहुत सारे साथी छूट चुके होते हैं, कुछ को सफलता मिलती है कुछ को सफलता नहीं मिलती, आपको कैसा लगता है ये?
1: देखिए ऐसा आया कि मेरे साथ जो थे इंस्टीट्यूट से निकले वो मेरा ख्याल अगर इस लाइन में कुछ मकाम हासिल नहीं कर पाए तो कहीं और हैं और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं।
0: मैं कोशिश नहीं करता
1: पीछे न देखने की, पर मेरी फितरत में ही नहीं है, मैं पीछे देखता ज्यादा नहीं हूं।
0: मतलब जो छूट गया वो छूट गया,
1: मतलब कुछ उसमें मेरा फिलोसॉफिकल एटीट्यूड भी नहीं है या फिर मेरी ये कोशिश भी नहीं है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूं, इतना एरोगेंस भी नहीं है उसमें। बस ये मेरे साथ रहा है कि कुछ पुराना याद नहीं आता मुझे ज्यादा, और ये भी नहीं एटीट्यूड मेरा कि मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूं, ये सब भी नहीं है। बस ये जो इस वक्त कर रहा हूं बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक दोस्त हैं रमेश दत्त हमारे सहारनपुर में, वो बकौल उनके वो कहते हैं भाई अब बस जीना अच्छा लगता है।
0: वाह वाह।
1: हाँ तो ये काम अच्छा लगता है,
0: मतलब छैया छैया
1: छैया।
0: तो आइए फिर सुनते हैं छैया छैया।
1: बेशक
0: आपको पसंद है ना?
1: बहुत पसंद है।

0: अच्छा कमल जी, आप एक्टिंग के अलावा क्या करते हैं?
1: एक्टिंग
0: एक्टिंग के अलावा एक्टिंग
1: देखिए बेसिकली
0: मतलब 24 घंटे आप एक्टिंग करते रहते हैं, वेदर कैमरा इज ऑन और
1: नहीं। ये मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्टिंग है जो मैं उसके सामने करता हूँ कैमरे के सामने, उसमें से एक्टिंग बिल्कुल खत्म कर दूँ।
0: अच्छा
1: तो हाँ, तो बाकी क्योंकि सारी जिंदगी में हम एक्टिंग करते ही रहते हैं, तो कम से कम यहाँ से बिल्कुल निकाल के इसका वजूद खत्म करना चाहता हूँ। कितना कामयाब हुआ हूँ ये पता नहीं, लेकिन कोशिश मेरी यही है। बाकी इसके अलावा मुझे शौक है खेलने के, आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन बचपन में, स्कूल में भी और अब भी। टेनिस खेलता हूँ मैं, और टेनिस से बहुत लगाव है, बहुत इश्क है, और क्रिकेट से भी। अपने बच्चों के साथ घर में जब बीवी नहीं होती तो फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्योंकि बीवी हम लोग को खेलने नहीं देती तो जब वो घर में होती हैं तो हम लोग थोड़ा बाहर आंगन में खेल लेते हैं, जब वो बाहर होती हैं तो फिर हम लोग अंदर खेल लेते हैं मैं और मेरे दोनों बच्चे।
0: अच्छा, तो आप उनकी मदद भी करती होंगे किचन में या वो आपकी मदद करती रहती
1: हैं? नहीं, मैं उनकी मदद इस लिहाज से करता हूँ कि मुझे खाने का बड़ा शौक है तो वो खाना इतना अच्छा लजीज बनाती हैं कि मैं उसको खाने में मदद करता हूँ। बाकी मुझे खाना, हालांकि आई एम सरप्राइज माई सेल्फ, क्योंकि मैंने इतना लंबा अरसा बैचलर लाइफ लीड की है मुंबई में कि, और अकेला रहा हूँ जिंदगी में, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आया और खाना बनाने की कोशिश भी नहीं की मैंने। हालांकि मेरा एक भाई है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, मुझे नहीं बनाना आता।
0: अच्छा, आपके आने वाले कोई सीरियल या फिल्म?
1: या एक अभिमान कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं राकेश सारंग, उनके साथ कर रहा हूँ, मनीष गोस्वामी का सीरियल है और वो आने वाला है। बाकी तीन ऑलरेडी चल रहे हैं तो मुझे वक्त भी नहीं है कि मैं ज्यादा कर सकूं। ये खत्म होने वाले हैं कुछ, सांस जैसे हुआ ये खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा आई टेक ऑन। एक आधा पायलट किया हुआ है और पायलट किए नीना के साथ, दूसरा हमारा पायलट शूट होने वाला है। तो ऐसा ओवरलोड नहीं करता मैं काम से अपने आप को,
0: मतलब जितना कर सकते हैं उतना ही लेते हैं आप।
1: हाँ, जितना अपनी पूरी एबिलिटी, अपना पूरा कंसंट्रेशन मैं जिस काम को दे सकूं वही करता हूँ। तो अच्छा अच्छा, आप मेरी पसंद के गाने तो सुनते रहे, आपको क्या पसंद है?
0: मुझे, आपने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी सत्ते पे
1: सत्ता, जी हाँ
0: है ना,
1: तो उसका गाना प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। चलिए साहब,

0: कमल जी
1: जनाब,
0: अगर आप अभिनय नहीं करते तो क्या करते?
1: हाँ, अभिनय नहीं करता, मैंने जैसे शुरू में बताया मैं फौज में जाना चाहता था, एयरफोर्स में, तो वहां इवेंचुअली नहीं जा सका कुछ वजह, तो मुझे समझ नहीं आता वाकई मैं क्या करता, क्योंकि ये काम इसमें आने के बाद मुझे इससे इतना इश्क हुआ इस काम से कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और काम कर सकता।
0: मतलब आदमी बेकार हो जाते
1: हैं। हाँ, बेकार
0: ही, कर ही नहीं सकता एक्टर बनके।
1: नहीं नहीं, एक्टर बनके बेकार हो जाता है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन इसको इससे
0: मतलब
1: अगर इश्क हो जाए, अगर इससे इश्क हो जाए तो फिर मतलब और कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ना, अगर एक और चांस दिया जाता मुझे तो शायद मैं स्पोर्ट्समैन होता, शायद मैं टेनिस खेलने लगता।
0: अच्छा, कई ऐसे भी डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, या कोई ऐसे स्टार्स, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किए, कोई बचा होगा जो आपके फेवरेट रहे और आपको मौका नहीं मिला होगा? तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पर हैं कि आप जिसके साथ काम करना चाहें आप कर सकते हैं, तो अभी आप किनके साथ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जिनके साथ मुझे मैंने काम किया है ऑलरेडी उनको मैं जानता हूं और उनमें मोस्टली बड़ा मजा आया सबके साथ काम करने में, और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया उनके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं तो मैं कह नहीं सकूंगा, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं वैरायटी ऑफ एक्टर्स के साथ काम करता हूं, अलग अलग रिएक्शन मिलते हैं, वरना एक वो होता है इंस्टिंक्टिवली आपको मालूम है।

0: अगला क्या करने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस और जो इंटरेक्शन है वो जरा रेपिटेटिव हो जाता है।
1: नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे कोई स्टार तो होगा ना आपका फेवरेट, जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या कोई डायरेक्टर कि इतने सालों तक तो आपको चांस नहीं मिला, अभी तो आपका समय आ गया।
0: नहीं, मैं अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ।
1: ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, लॉन्गिंग नहीं है कि मैं उसके साथ काम करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए इसी बात पे एक गाना सुनवा दीजिए, थोड़ा मूड अच्छा हो जाए।
0: मूड अच्छा हो जाए, चलिए। तो फिर अपनी बीवी के बात जब करता हूँ तभी मूड अच्छा रहता है।
1: ठीक है।
0: तो उन्हीं की फिल्म का एक और गाना सुना देते हैं आपको, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा है।

0: इस गीत के साथ ही मैं कमल जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती स्टूडियो में आपने हमें अपना अनमोल समय दिया। धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार के पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहां हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने HIV एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं और इन परीक्षाओं में चयनित कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थीं। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे।

0: तब प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
0: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
1: जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
0: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि एक ऐतिहासिक समझौता है।
3: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
4: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3

0: गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26 अरब 86 करोड़ डॉलर पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सके और किसानों को लाभ पहुंचा सके। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
2: We need to develop sports infrastructure.
3: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
2: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
1: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और NEET प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
4: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नए चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने HIV एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10

0: टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कंफर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. New Delhi says core concerns of India-China relations should be guided by mutual respect, interest and sensitivity. India says targeting of commercial ships and seafarers in Gulf region is unacceptable, expresses concern on escalating situation in Red Sea. Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. Saudi Arabia activates warning in Mecca amid Houthi attack speculations. And in men's cricket, second T20 international between hosts Afghanistan and India underway in Delhi. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
3: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
2: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region.
3: We are deeply concerned with the escalation in the situation that we see in the Red Sea region. We have condemned the attack on the Saudi sovereign territory, including on civilian infrastructure and economic assets. Such attacks, they undermine regional stability and threaten freedom of navigation through the Bab el-Mandeb. These are unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region. Having said that, let me say that we continue to receive energy supplies from that part of the world.
2: On the attack on commercial vessel MTL Gaia off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. When asked about the reward of 70 lakh Pakistani rupees announced by Pakistan on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar, the spokesperson said such gimmicks and attempts at hoodwinking by Pakistan are not new. He said Pakistan must take concrete action rather than making announcements that are ultimately of no consequence. In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif today. Alerts had also been issued and lifted in six cities, including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. More from our West Asia correspondent.
4: Saudi Arabia today issued fresh emergency alerts in Makkah, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just a few minutes, with authorities saying the danger had passed. Alerts were earlier issued and lifted also for the city of Yanbu, the main Saudi Red Sea oil port. Monday's Houthi attacks on Khamis Mushayt, Aba and Taif had injured 13 civilians and damaged homes and vehicles in Saudi Arabia. The Saudi-led coalition has promised a firm response and retaliation. In the Strait of Hormuz, UK MTO reported another vessel being hit on Monday. The daily commercial ship traffic through the strategic waterway fell to just 4 on Monday compared to 10 a day earlier. From Dubai, Manish Shiva for Akashvani News.
2: Meanwhile, a Houthi official today claimed that Saudi warplane struck Taiz province of Yemen, killing 3 people, while Human Rights Watch accused the Houthi rebels of possible war crimes with its attacks on commercial vessels. The renewed fighting in Yemen is endangering civilians and threatening shipping through the Red Sea, a route that has become more important due to disruptions in the Strait of Hormuz. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today laid emphasis on India's strong commitment to multipolarity, which emanates from independent stance and belief in strategic autonomy. Delivering the valedictory address of Silver Jubilee celebration of Indian Council of World Affairs in Delhi, Dr. Jaishankar expressed confidence that India is destined to rise in a turbulent world. He underscored the contemporary trends shaping India's diplomacy and nation's growing economy and capabilities in the last decade and its implications for global engagement.
5: When India advocates dialogue and diplomacy, when we stress that endless war must give way to an end to war, this is our particular way of thinking. Indian diplomacy will always have peace and development as its central agenda, not just as an idealistic goal, but as a sensible prescription for the world order to advance progress and prosperity.
2: This is Akashvani giving you the news.
1: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
2: The finance ministry today clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The ministry said that payment